आई गुरपुरे का जपया जाप। कहा करै कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि सारन परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बेलावल महला पंजवा। सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा काछ दुख न व्यापै। आगे दरगह पूरन काम रहाउ। आप त्याग परिय नित सरणी गुरते पाइय एहो निदान। जन्म मरण की कटिय फासी साची दरगह का निशान। जो तुम करहो सोई भल मन नाओ मन ते छूटे सगल गुमान।

मेद हार गुण गाए जम दूतन का उतरास अहे रहाउ। जेते पुनः चरण से कीने मान तन प्रभ के चरण गहे। आब न जान परम भाव नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे। निर्भव होए भजहो जगदीसै एहो पदार्थ बड़ भाग लहे।

नाथ ही सहाई संतना आब चरण गहे रहाउ आहे मान अवर न पावै चरणावै चरणावै उल ज्यो आलमकरंद कमल स्याओ कमल ज्यो अनरस नहीं चाहे एक हरला है अन्न ते टूटी है देख ते छूटी है मान हर रस कूटी है संग साधु उलटी है

भजन राम को नाही तिन नर जन्म अकारथ खोया जहि राखो मन माही रहाउ तीरथ करै ब्रत फुन राख नह मनुआ बस जा को नेह फल धर्म ताहि तुम जा मन हो सात कहत मैं जा कौ जैसे पाहन जल मह राख्यो भेद नाहे तेह पानी तैसे ही तुम ताहे पछान हो भगत हीन जो प्राणी कल मैं मोकत नाम ते पावत गुर यह भेद बतावै कहु नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै बेलावल अष्टपदिया महला पहला कर दसवा एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद निकट बसै नेख है सब सोई गुरमुख बिरला बूझै कोई बिन भय पय भगत न होई शब्द रत्ते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथ सब कोई काथ काथ बाद करे दुख होई काथ कहना ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पारू रहत न होई नावहो भूले थाओ न कोई नावहो भूले थाओ न कोई मन माया बंदे ओ सार जाल घाट घट प्याप रहे बिखनाल जो आंजै सो दिसै काल कार दिसी दो हृदय रुमाल हृदय समाल सो ज्ञानी जन साबद लिबलाई मनमुख हमै पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वड़ियाई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कछोत वेद पुकारै भगत स्रोत सुन सुन मानै वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ा मंग गुरमुख सांत ऊतम करा मंग मानमुख जोनी दुख सहा मंग बंधन टूटे एक नाम वसा मंग मन्ने नाम सची पद पूजा किस वेखा नाही को दूजा देख कहाओ पावै मन सोए नानक कह अवर नहीं कोए बिलावल महला पहला मन का कहया मन सा करै हो मन पुन पाप उचरै माया माद माते तृप्त न आवै तृप्त मुक्त मन साचा पावै तान तान कलात सब देख अभिमाना बिरनावै किछ संग न जान रहा की चह रस भोग खुशिया मन केरी धन लोका तान भसमै ढेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन सब दै नहीं उतरै मैल गीत राग घन ताल से गीत राग घन ताल से कूरे ग्रेह त्रेह गुण उचरै देह गुण उपजै बिन सह दूरे दूजी दुरमत दर्द न जाए छूटै नाम छूटै गुरमुख दारू गुण गाए धोती उजल तिलक गल माला अंतर क्रोध पढ़ैत नाट साला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाहि सुख थिया सूकर स्वान घर तब मंजारा पशु मलेच्छ नीच चंडाला गुर ते मोह फेरे तेन जोन पवाईए बंधन बाध्य आया आईय जाइए गुर सेवा ते लह पदार्थ हिरदय नाम सदा कृतार्थ साची दरगाह है पूछना होए माने हुक्म सीजै दरस होए सतगुर मिलै ता तिसकाउ जाणै रहर जाई हुकम पछाणै हुकम पछाण सचै दरवास काल विकाल शब्द भय नास रह अतीत जाणै सब तिसका तान मन अर्पै है ए हो जिसका ना ओह आवै ना ओह जाए नानक साचे साच समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद जाग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभिमान बिन नावै पाज लहग निदान सतगुर सेव नाम बसै मन चीत गुर भेटे हर नाम चेत आवै बिन नावै होर झूठ बदीत रहाउ गुर कहया साकार कमावहो शब्द चीन सहज कर आवहो साचै नाए वडाई पावहो आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दार घर महल ठाउर कैसे पावै हर जियो सेवी है अंतर जामी घाट घाट तिस घाट घाट अंतर तिस की जो जिस की जोत समानी घाट घाट यंत्र जिसकी जोत समानी तिस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभिमानै गुरमुख नाम सदा सदा खानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगन काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति जोत समाई सतगुर मिलिया वड्डी वड्याई दुख काटै हिरदै नाम वसाई नानक नाम रत्ते सदा सुख पाई गुर मत मान्या करणी सार गुर मत मान्या मुख द्वार नानक गुर मत मान्या परवारै साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदिया घर ग्यारवा
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हाव मिटै अणदन रस हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरभउ ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खेन पल रह न सकाउ बिन नावै गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ एक गृहो एक गिरहो दस द्वार है जाके अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावै है मानमुख अंधुले खबर न पैया कंचन कोट बाहु मानक भरिया जागे ज्ञान तत्लिब लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहे थाप खेवट शब्द गोर पार लंघैया जमजा गाती नेड़ न आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हार जस कह ते अंत नव लहिया मनमुख गुरमुख मनुआ इकत घर आवै मिलाओ गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्स मन त्रिपतै श्रावण बाणी गोर शब्द सुनैया सोना सुने आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रैगुण माया मोह ब्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट साम एक दृष्ट साब सम कर जाने नदरी आवै साब ब्रह्म बसरैया एक दृष्ट साब सम कर जाने नदरी आवै साब ब्रह्म पासरैया राम नाम है जो दस बाई गुरमुख आपे अलख लखैया नानक दीन दयाल भय है भगत पाए हर नाम समैया बेलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जाल त्याभो हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरण परे सेई जन उबरे ज्यो प्रहलाद उधार समैया रहाउ पार अठार है मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मान अभिमान बिछुड़ दूर गईया हार गात मित करता आपे जाने सब विद हार हर आप बनैया जिस सदगुर भेटे सो कंचन होवै जो तुर लिखे आ सुमिटै ना मिटैया रतन पदार्थ गुर मत पावै सागर भगत भंडार खुलैया गुर चरण एक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खेन खेन पल कहिया हर पार न पावै परै परैया सासत वेद पुराण पुकार है धर्म करहो खटकर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड भरम बिगूते लोभ लहर नाब भार बुडैया नाम जप हो नामे गात पाव हो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़िया हो मैं जाय त निर्मल होवै गुरमुख परचै परम पद पैया एहो जाग जीवै एहो जाग वर्ण रूप सब तेरा जित लावै से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजह जित पावै चित राहि चलैया बिलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हाओ बल बल सतगुर सत पुरखैया राम नाम मेरा प्राण वसाए सात गुर परस हर नाम समैया जन की टेक हर नाम टिकैया सतगुर की धार लागा जावा सतगुर की धार लागा जावा गुर कृपा ते हर दर लहिया रहाओ एहो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मथ मथ तत कढैया लाल जवे हर नाम प्रगासिया भांडै भाउ पवै तित अइया दसन दास दास होए रहिया जो जन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प धरा गुर आगै गुर प्रसादी माया कथ कथैया मनमुख माया मोह आपे एहो मान तृष्णा जल च तिखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अग्न बुझी गुर शब्द बुझैया एहो मन नाचै सतगुर आगै अनहद शब्द धुन तूर वजैया हर हर उस तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोय अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हठ कर्म कराया अभिमानी ज्यो बालक बालू घर उसरैया आवै लहर समुद सागर की खेन मह भिन्न भिन्न टह पैया हर सार सागर हर है आपे एहो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जलह समावह नानक आपे आप रमैया बिलावल महला चौथा सात गुर परचै मन मुद्रा पाई गुर का शब्द तान भासम दृढ़ैया अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन सार संगत मिल रहीया कृपा करहो मनसूदन माधव मैं खेन खेन साधु चरण पखैया रहाउ तजा गिरस्त भया बनवासी एक खेन मरुआ टिकै ना टिकैया धावत धाय तदे घर आवै हर हर साधु शरण पवैया धिया पूत
छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गवन करैया पर भवन करै बूझै नहीं त्रिसना मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे मान मग है रिद सिद्ध चेट क चेट कैया त्रिपत संतोख मन सांतना आवै मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज ओत भोज सब वरण रूप जी जंत उपैया साधु शरण परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वै चंडाल चंडैया नामा जय देहो कंबीर तिलोचन आओ जात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धान धन्ना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भक्त बछल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा धार रखैया बेलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्राभ केरी सोन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मान लैया हाउ आकल बेकल भई गुर देखे हाउ लोट लपोट होए पैया रहाउ हाओ निरखत फिराओ सब देश दशांतर मैं प्राभ देखन को बहुत मन चैया मान तन काट दियो गुर आगै जेन प्राभ जिन हार प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन सदेसा दे प्राभ के राजे अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट दियो चरना ताल जो हार प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्राभ प्रबुद्ध है गुण कामन खार हार प्राभ लहिया भगत बच्छल वा को नाम कहियत है सारण प्रभु तिस पाछै पैया किमा सी गार करे प्राभ खुशिया मान दीपक गुर ज्ञान बलैया रास रास भोग करे प्रभ मेरा हाम तिस आगै जियो काट काट पैया हर हर हार कंठ है बनया मान मोती चूर वाड़ गहन गहनैया हर हर सरदा सेज बिछाई प्राभ छोड़ न सकै बहुत मन पैया कहै प्राभ आवर आवर किछ कीजै सब बाद सीगार फोकट फोकटैया कियो सीगार मिलन कहताई प्राभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करह तेरा वास पैया दया दीन करहो रख ले बहु दया दीन रख करहो रख ले बहु नानक हार गोर सरण समैया बेलावल महला चौथा मैं मान तन प्रेम आगम ठाकुर का खेन खिन सरदा मान बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी ज्यो चात्रिक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मेल मिल सखी हर कथा सुनैया सात गुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगै सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मान तान एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया वैदक नाटक देख भुलाने मैं हिरदय मन तन प्रेम पीर लगैया हाउ खेन पल रहन सकाउ बिन प्रीत मैं जाओ बिन अमल है अमली मार गैया जिन कौ प्यास होए प्रभ केरी तेन अवर न पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै हाउ तिस विटह बाल बाल घूम गैया अनेक जन्म के बिछुड़े जान मेले जा सत सत सात गुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल न पावै मन मान मुख भर मैया गोर गुर करत सरण जे आवै प्रभ आए मिले खेन ढील न पैया कर कर कर किरिया चार बधाए मान पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के घर बेसुआ कै घर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत घर पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्राभ आन आन मेहदी पीसाई आपे घोल घोल अंग लैया जिनका ठाकुर कृपा धारी बाह पकर नानक कढ़ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी घर वार वा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपजा जा उपजा उपमा जात न कही मेरे प्राभ की उपमा जात न कही ताज आन शरण गही रहाउ प्राभ चरण कमल अपार हा

डोर प्रेम प्रीत एह संत निर्मल रीत ताज गए पाप विकार हारे मिले प्राभ निरंकार प्राभ पेखी है बिस्मार चाख आनंद पूरण सार नह डोली है इत ऊत प्राभ बसे हर हर चीत तेन नाहे नरक निवास नित सिमर प्राभ गुणतास ते जाम न पिख नैन मोन मोह सुन मोहे अनहत बैन हर सरण सूर गोपाल प्राभ भगत बास दयाल हर निगम लह है न भेब नित करह मुन जन सेव सुख दुख दीन दर्द निवार जाकी महा विखड़ी कार ताकी मित न जानै कोय जलथल महियल सोए कर बंदना लख बार थाक परे ओ प्राभ दरबार प्राभ करो साधु धूर नानक मानसा पूर बिलावल महला पंजवा प्राभ जन्म मरण निवार हार परे ओ द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग

राम मेरे हर प्रभ भाव है सो करै हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापै राम मानसु जन्म हर पाई है हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सो हागनी

जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावन महला चौथा श्लोक। हार प्रभ सज्जन लोड़ लहो मान वसै बड़भाग, गुरपुरै वेखा लिया नानक हर लिबलाग। शांत मेरा हर प्रभ रावण आइया, मेरा हर प्रभ रावण आइया। हो मैं बिख झागे राम, गुर मत आप मिटाया। हर हर लिबलागे राम, अंतर कमल प्रगासिया, गुर ज्ञानी जागे राम। जान

पूर्ण पते सहजे समय गोविंद पाई देह सखीए मोह मते देन रैन ठाडी कराओ सेवा प्रभ कवन जुगति पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहो मोह लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतना वे सहारा खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहर राम मिले संत प्यारे दया तारे कथ है अकथ विचारो एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत।

सखी असी पिरका मंगल गाव है तज मान सखी तज मान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लाग चरण सरण दयाल प्रीतम सागल दुरत विखंडनो होए दास दासी तज उदासी बाहुड़ विधि ना तावा नानक पै अंपै करोह कृपा ताव मंगल गावा अमृत प्रेय का नाम मैं अंधुले टोहने ओह जो है बह प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महा विचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए ठीठ मीठी मन है लागे नाम लैण न आवे गृह

अनाथ जाओ जान हो त्याओ रखो हो चतुराई मोहे नाहे रिझाव हो चतुराई मोहे नाहे रिझावो कह मुख हो नह चतुर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहि नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावै तह रख तुही

सब पूरी मिले स्वामी अपरंपरा। मिलावल महला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर शांत दयाल प्राभ सर्व सुखानिद पियो सुख सागर ब्रभ भेटे।

मन हट कर्म कमावणे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याईया जे वस्त मंगिया साई पाईया जे नाम चेत लाईया गोह जुगल जिया की कीचा सतगुरु पास ता सर्व सुख पाईया गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाईया जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाईया श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रमेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है शब्द तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए सच त्याय अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दह दिस पसरिया गुर का सह सुभाए नानक जिने अंदर सच है से जन छपै ना कसा देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते अर पाईऐ जाको नदर करे मानस ते देवते पाए सच्ची भगत जिस दे हमें मान मिलायन गुर का शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे ना वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई हर करता आ वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदा भाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन ओना पराया भला ना सुखाई क्या होवै किस ही की झख मारी जा सच्चे सिओ बणियाई जे गल करते भाव जे गल करते भावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब झख झख मरै लोकाई श्लोक महला तीजा त्रिग एहा आसा दूजा भाव की जो मोहे माया चित ला मोहे माया चित लाए हर सुख पलर त्या गया नाम सर दुख पाए मनमुख अज्ञानी अंधुले जन्म मरै प्रिया वै जाए कार्ज सिद्ध न होवनी अंत गाया पछताए जिस कर्म होवै ते सतगुर मिलै सो हर हर नाम त्याए नानक नाम रते सा जन सदा सुख पायन जन नानक तेन बल जाए महला तीजा यासा मनसा जग मोहनी जन बोहया संसार सब को जमके चीरे वेच है जेता सब आकार

हर पौड़ी जिथा जाइया जगत मह तथ हर साई अगे सब आपे वर्तदा हर सचा न्याई कुड़ियारा के मुह फिट किया है सच भगत वडियाई सच साहिब सचा न्यायो है सिर निंदक शाही जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई सलोक महला तीजा पूरा भाग सतगुर पाई है जय हर प्रभक्श करे उपावा सिर उपाओ है नव प्राप्त होए अंदर सीधर सांत है हिरदा सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नाक नाय वडियाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन पा एह गुणी निदान सुख दाता तेरा मन वसै हमै जाय अभिमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पात सहा सहा राजे खान उमराव सिकदार है ततने सब हर के किए जो किश हर करावै सो ओए कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सब ना का प्रभ सतगुर कै बल है तिन सब वर्ण चारे खाणी सब श्रेष्ठ गोले कर सतगुर अगै कर कमावन कौ दिए हर सेवे किया सी वडियाई देखो हर संत हो जिन विचो काया नगरी दुश्मन दूत समार कढ़िये हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिये सलोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम पाओ भागै महला तीजा गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाव मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान प्रगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया महला तीजा मन मुख मैले मरै गुवार गुरमुख निर्मल हर राख्या और तार भनत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेव हो मैं मल जाई अंदर संसा दुख व्यापे सिर तंदा नित मार दूजे पाए सूते गऊ न जा

इस जुग मैं भगती हर तन खटिया होर सब जगत भरम भुलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम ते आया विख्या माए उदास है हम मैं शब्द जलाया आप थरिया कुल उदरे तन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सचे सिउल बिलाया ब्रह्मा बिसन महादेव त्रै गुण भुले हमें बहु बधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजा पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले बिन गुर तत न पाया मन मुख दुखिए सदा भ्रम भुले इतनी बिरता जन्म गवाया नानक नम्रते सही जन सम दे जे आपे बख्श मिलाया महला तीजा नानक सो सा लाहिया जिस वस सब किश होए तिसा सिरे वो प्राणी हो तिसमने अवर न कोए गुरमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी जिनी गुरमुख हर नाम धन ना खट्यो से देवा लिये जोग माहे ओ मंग दे फिरह सब जगत महे कोई मोह थोक न तिन कौ पाहे पराई बकीली करह अपनी प्रतीत खोबन सगवा पिया बलखाहे जिस तन कारण चुगली कर है सो तन चुगली हथ न आवै ओ भावै तथा जाहे गुरमुख सेवक पाए हर तन मिलै तथ कर्महीन लै ना सकै है होर थै देस दसंतर हर तन नाहे सलोक महला तीजा गुरमुख संसा मूलां होवई चिंता विचों जाए जो किश होए सो सहजे होए कहना किशु न जाए नानक दिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ना पाए महला तीजा काल मार मनसा मनस माणी अंतर निर्मल नाओ अनदन जागा कदे न सोवे सहजे अमृत पियाओ मीठा बोले अमृत बाणी अनदन हर गुण गाओ निष्कर वासा सदा सोह दे नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर रतन हर धन रतन जवे हरी सो हर गुर हर धन हर पासो देवाया जे किसा देव केहो देस आवै ता कोई केहो मांग लए अकै कोई केहो देवाए एहो हर धन जोर कीता किसा नाल ना जाए वंडाया जिसनो सतगुर नाल हर सरदा लाए तिस हर धन की वंड हाथ आवै जिसनो करता धोर लिख पाया इस हर धन का कोई सरीक नाही किसा का खात नाही किसा का सीव बन्नै रोल नाही जे को हर धन की वकीली करे तिस का मोह हर चहु चू कुंडा विच काला कराया करके दिते नाल किसा जोर वकीली ना चलाई देहो देहो नित नित चढ़ा सवाया सलोक महला तीजा जगत जलंदा रख लाए अपनी कृपा तार जित द्वारा उबरा तत्ता लह उबार सतगुरु सुख वे खालिया सच्चा शब्द विचार नानक आवर न सुजाई हर बिन बख्शनहार महला तीजा हमें माया मोहनी दूजा लगा जाए ना एह मारी ना मरै ना एह हट विकाए गुरखा शब्द पर जालिया ता एह विचो जाए तन मन होवे उजला ना वसै मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरुक पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती तुरह हुकम बो जनी सान पुती पाती जावाई सकी अगह पिछो टोल डिटा लाहेन सबना का अभिमान जिथा को वेखा तथा मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुर नो मिल मने सो हलत पलत सिजै जे वे मुख होवै सो फिर भ्रिष्ट थान जन नानकै वल होवै मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पाउदी भित देख कै सब आए पए सतगुर की पैरी।

तिस हरदास आका दास होए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभ वसै हो कुर्बान है तिस जिन कहो पूर्व लिखिया रस संत जना स्यो तिस पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेसर सुनिया सोई वर्त्या जगत मह घट घट मुख भणिया बहुत वडियाईया साहिब न जाही गणिया सच सहज अनाद सतगुरु पास सची गुर मणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म सचे स्यो बणिया सलोक महला तीजा अपना आपना पछाणई हर प्रभ जाता दूर गुर की सेवा विसरी क्यों मन रह हजूर मन मुख जन्म गवाया झूठा लाल चकूर नानक बख्श मलायन सचा शब्द हदूर महला तीजा हर प्रभ सचा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अनद नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वडपागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवै सतगुरु का फिर सरण गुर आवै पिछले गुण है सतगुर बख्श लाए सतसंगत नाल रलावै ज्यो मीह बुठै गलियां नालिया टोबिया का जल पाए जाए पवै विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावै एह वडियाई सतगुर निरवैर विच जित मिलिया तिसना भुख उतरै हर सांत तड़ आवै ए नानक एहो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहा का जे सतगुरु नो मन्नै सो सबना पावै सुध बिलावल बाणी भगता की कबीर जियो की एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ऐसो एहो संसार पेखना रह न को पहिया रे सुधे सुधे रेग चलो तुम नतर को तक

रे धनवंता अर निर्धन मनाई ताकि कशु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारा ऐसो काल बडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवह न जाहे न कबहु मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलतर लक्ष्मी माया यह तजो जिया जानी रे कहत कबीर सुनो रे संत हो मिल है सारंग पानी रे बिलावल विद्या न पराव बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत।

प्रसाद सफल जन्म मोका गुरु की ना दुख बिसार सुख यंत्र दीना ज्ञान अंजन मोका गुरु दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन स्यो जियो समाना बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्द देख सब को हसा ऐसी दशा हमारी असट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किश नहीं पावखंड राम सगल जी शरणागति प्रपूर्ण काम रहाओ जो तेरी शरणागता तिन नाही पार ऊच नीच तुम ते तरे अलज संसार कह रविदास अकथ कथा बहु काय करी जय जैसा तू तैसा तुही क्या उपमा दी जय बिलावल जे कुल साध बैस ना होए बरन अबरन रंक नहीं सुर बिमल बास जानिया जग सोए रहा ब्रह्मन बैस सूदर खतरी डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो टाओ धन पुनीत कुटंब सब लोए जन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बेख खोए पंडित सूर शतरपत राजा भक्त बराबर और ना कोए जैसे पुराण पात रह जल समीप भन रविदास जन्मे जग ओए बाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुर प्रसाद नृप कन्या के कारण एक भया भेख तारी कामारती सुवारती वागी पैसवारी तब गुण कह जगत गुरा जो कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाइया जो जंपक ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कारने

काल पटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी व्यर्था अवरा पह कहिया अवरा पह कह मन लाज मरासा जो संसार है के कुटुंब मित्र भाई दीस है मन बेरे ते सब अपने सवाय मिलासा जित दिन उनका सुभाव हो न आवे तित दिन डेड़ा को ना टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद उप करै दुख सुखासा तिसकाया प्रभासा क्योंकि जय मन मेरे जो यंती अवसर रख ना सकासा हर जप मंत गुरु उपदेश ला जप हो तन अंत छाए जन हर प्रीत चितासा जन नानक जन दिन नाम जप हो हर संत हो ए छूटन का साचा प्रभासा गोंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सीत शांत शीतल मन अपना जैसे सकत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मान

गुरमुख को जला हर रतना जिन हर त्याया दिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलहो हर दसना शब्द पछाण राम रस पाव ओ उत्तम संत पायो बड़ बड़ना ते जन की बड़ियाई हर आप वधाई ओ कटै ना कसै की कटाई एक तिल तिल तिलना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याय नित कर जुरना जन नानक आओ हर दान एक दीजै नित बसै हृदय हरि मोहे चरना गुंड महला चौथा जितने साहा पात साहा उमराव सिखदार चौधरी सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान हर अविनाशी सदा तिरने

ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है जो हर त्यावै सो प्रधान जो चंदन निकट वसै हिर डबपुड़ा त्यो सत संगत मिल पतत प्रवान जो सब ते

अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईऐ वडभागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम।

एक माए उत पुज खेल कर जगत व्याए तीन गुणा कह संग रच रसे इन कौ शोर ऊपर जन बसे कर कृपा जन दिए छाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रवसार बिन भगति सब होए खुवार गोंड महला पंजवा कल कलेस बिटे हर नाए दुख बिन से सुखी नठाओ जप जप अमृत नाम अगाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपत जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारे अग्न सागर ते उतरे पारे जन्म मरण किसमिटी उपाद प्रभ सिव लागी सह समाद तान तनंतर एको स्वामी सगल कटा का अंतर जामी कर कृपा जाको मत दे आठ पैर प्रभ का नाव ले जाका अंतर वसै प्रभ्याक आप ताका हृदय होय प्रगास भगत पाए हर कीर्तन करिया जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिया गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घाट घाट रमैया सामै चीना इन बेद

करतार प्रभु की शरण गही सब त्याग गुरु सो प्रसन्न पय वड भाग आठ पैर गाइया गोबिंद तन तन प्रभु का प्रभु की जिंद रहो हर गुण रमत पय आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बखसंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए कर्म धर्म एहो तत् ज्ञान साध संग जपिया हर नाम सागर हर सागर तार बोहत प्रभु चरण अंतर जामी प्रभु कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्मन कब हुहार नानका अंग किया करतार गुंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरदेव प्रभु कृपाल दयाल गोबिंद जिया जंत सगले बख सिंध तेरी शरण प्रभु दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभु दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्व समाही अपने दास का हलत पलत सुवारा है पतत पावन प्रभु बिरद तुम्हारा है औखद कोट सिमर गोबिंद तांत मांत भजिया भगवंत रोग सोग मिटे प्रभु त्याए मन बांशत पूर्ण फल पाए करन कारण समरथ

नारायण गायण बसत अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नारक दास गही गुंड महला पंजवा जा कौ राख रखनहार तिसका अंग करे निरंकार रहाओ मात गर्भ मह अगन जो है काम क्रोध लोभ मोह न पोह सा।

प्रभ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए। जो जो शरण पाया हर राय, सो दास रखे अपना कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओह करे खन मैं रुलता खाकू नाल। हैपी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास।

राम रतन बसा मन आए सफल जन्मता का प्रवाण पार ब्रह्म निकट कर जान पाए भगत प्रभु कीर्तन लागा जन्म जन्म का सोया जागा चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद राव सच वापार दास चना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदिया महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरदेव सफल मूर्त सफल जाकी से।

दुष्ट अहंकारी मार पचाए नंदक कै मुक्ति नो रोग जय जयकार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जपै गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे प्रवाहे सगल पै मिटे जन जाकी सरन निंदक मार पाए सब तरन जन की निंदा करे न कोय जो करे सो दुखिया होए आठ पहर जन एक त्याए जमुआता कह निकट न जाए जन निर्वैर निंदक अहंकारी जन पल मल निंदक वे जन पल मन है निंदक वे कारी गुर कै सिख सतगुरु त्याया जन उभरे निंदक नरक पाया

गौण गृह शोभा जा करे नाहे आवत पहिया खुदे जाहे वाक यंत्र नहीं संतोख बिन सोहागन लागै दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपी सर डोले चीत रहाओ सुहागन कृपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो सूती साधु कै ठाडी दरबार शरण तेरी मोह कौ निस्तार सुहागन।

जैसे बाजे बिन नहीं ली जाय फेरी खसम दुहागन तज अहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए।

सतगुर सेव सुख होई जो इच्छा हो सोई पल पाव हो फिर दुख न व्यापै कोई रहाओ। काचे भांडे साज नवाजे अंतर जो समाई जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी किरत कमाई मन तन थाप किया सब अपना एहो आवण जाना जिन दिया सो चेतना।

राम कली महला पंजवा होवे सोई भल मान अपना ताज बमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सुआओ आनंद कर संतर जप शाड सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की

ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, जन्म तो अखां दे खुलदे ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने, लग रही ने। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर दी तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख दे प्राण कुछ लभ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं, इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है, मनुख है एक तलाश का ना, कुछ खोज रहे हैं कुछ लभ रहे हैं। दोहरावा मैं, खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं, इसका बोध भी। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लभ रहा है, तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लभ रहा है, रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने, राजा दे अर्थ जो रज गए और कोई इसके अर्थ नहीं। जो रज गया राजा, जो भूखा है भिखारी, तलाश है राजा होने की, जमिया भिखारियां की तरह जीविया भिखारियां की तरह, यकीन जानो मर गया भिखारियां की तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है, खोज ते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं, तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है, कि जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है, जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होता है, रजे होया राजा होता। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया, धन पाया, तन दिया जितनिया लोड़ा ने इदी झोली नो भरे, लेकिन जमीन मनुख नो रजा नहीं सके, रजा नहीं सके, तृप्ति दे नहीं सके। इतनी जमीन दे होंदे हां मनुख भुख है, मनुख भुख है। मैं फिर अर्ज करा, भुखे नु ही भिखारी कहते ने, रजे हुए नु ही राजा कहते, रज गए राजा। अजे भुखा है भिखारी, भुख ते मंग ते मजबूर करे, कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अनंत जन्मा तो ए भुख जारी है। तन दिया लोड़ा ने लोड़ा बड़ी सीमित ने, मन का लोभ है लोभ सीमित नहीं है, नहीं। ज्ञानपूर्वक सरवण करना, तन दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआ भी लोड़ा ने वही साड़ी लोड़ है। पर तन की लोड़ नो जग मन लोभ बना रहना है। इधर तक निका जहां मैं उदाहरण दे दिया, जैसे भोजन की भुख है तो ठीक है, मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, तृप्त हो गए, तन ते रज गए, तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई, भुख नहीं है ये खा रहा है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया, ये तन की लोड़ नहीं ये मन का लोभ बन गया। इस वास्ते कई ते कहने ने की करिए, पेट ते भर गया पर मन नहीं भरिया, मन भरदा भी नहीं। क्यों? तन दिया लोड़ा मन दिया लोड़ा ही नहीं है, पर तन दिया लोड़ा नू
भ्रांति करके मन ने अपनिया लोड़ा समझ दे। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जो मन मन लैंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल ये नहीं कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या तो है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लैंदा, मन मन लैंदा, मन पदार्थ नू मन लैंदा परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लैंदा निरंकार नू नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना होंदा। मन धन नू मन लैंदा मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लैंदा संसार नू मन लैंदा मन करतार नू नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया। कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, मन मनदा है। गुस्ताखी माफ ते माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनदा है बाकी नहीं मनदा। इस संबंध च मैं दो श्लोक तुहाडे सामने रखदे हां ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। यह दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी का। यह दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख इको ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इतने श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग विच। अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग विच गुरु अर्जन देव जी ने, और गौड़ी राग विच भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवाज ते पशुआ को भी है, कौआ भी काय काय करता है, शेर भी करे है, गऊ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं। आवाज ते पशुआ को भी है, अल्फाज नहीं है। धुन ते पशुआ को भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं। तो धुन तो आवाज तो पशु की होंद का ते पता चल जा, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है भी ये शेर की गर्जन, इस आवाज तो ही पता चलता पे कोई ना, इस आवाज तो ही पता चलता पे कौआ है। आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है, पर जिस दी आवाज है उसनों पूछिए तू कितों आया, कितने जाना है, की लभ रहे हैं, इस सब कुछ कहण वास्ते उहदे कोल अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है। इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकिया, हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, पर हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं है। इसका जिन्ना बैरूनी विकास होया है सब अखरां दे आसरे दे होया है। अखरी नाम अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण,
ਅਖਣਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾ। ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀ ਮੇਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ। ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਕ ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਕ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਖੋ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ

दोस्ती संबंध जुड़ते ने बोल चाल, पर दो बोल ऐसे बोले ने संबंध टूट गए, टूट गई प्रीत बुर बोल। महाराज कहने ने बड़ी पुरानी दोस्ती, दो बोलों नाल टूट के रह गए, बड़े बड़े घरेलू कलेश झगड़े महाभारत एक अखर तो शुरू हो जाता। द्रौपदी की जबान चो ही निकल गया से कि अंधे का अंधा है, धरतराष्ट्र अंधा से, उसका लड़का दुर्योधन ये अंधे का अंधा है। लंबे चौड़े इतिहास के पन्ने में थोड़े सामने ना रखा, क्योंकि द्रौपदी बहुत अच्छी चित्रकार सी, कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी। इतनी कला किसी एक मनुख दे होंदी नहीं, पर उस दे है। नवा महल बनाया सी उन्होंने घर, ते घर दे अंदर सरोवर, घर दी चट करनी सी, महल दा महूरत होना सी। बड़े बड़े मेहमानों नु बुलाया सी राजा, राजिया का महल, आपकी गैत लिए अर्ज करा। द्रौपदी ने उस सरोवर नु सजाया, उदे इस ढंग की पेंटिंग की थी। उस सरोवर बगीचा लगता सी, इधर क्यारी बनी, इधर क्यारी बनी, इधर पुल किड़े, इधर पुल किड़े, हैगा वो पानी सी, पानी दी चित्रकारी, पानी दे बगीचा बना दिता। सिर्फ रंगा बुलाए गए सन, दुर्योधन भी पांडवों का चचेरा फिरा, पर यह जरा देरी नाल आया, देरी नाल आया तो कदमों में तेजी भी सी, फिर मैं वक्त से पहुंचा। तेजी करके उन्हें सोचे रस्ते चो होके मैं महल के अंदर दाखिल होवा, नहीं सीधा बगीचे चो लग जा। जैसे बगीचे चो लंघन की कोशिश की, बगीचा तो है ही नहीं, पानी से पानी च कदम रखे डुब, तैरना जानता सी, तैर के बाहर ते आ गया, पर द्रौपदी की कई दिन की मेहनत बर्बाद चली। वो जो सुंदर चित्रकारी की थी सी उसने सब खराब, दुर्योधन नु वेख के उदे मुंह निकलिया अंधे दा अंधा ही। सिर्फ इसे एक बोल ने महाभारत करा दिता, इसे एक बोल। बड़े बड़े घर के कलेश देख लेना, किधरे नूं का एक बोल ते किधरे सस का एक बोल, किधरे पिता का एक बोल किधरे पुत्र का एक बोल, किधरे वड्डे भरा का एक बोल किधरे छोटे भरा का एक बोल। बड़ा भारी घर नूं कलेश का अखाड़ा बना के रख देना। फिर महाराज की बाणी कहती है, ओ मनुख हौला है केड़ा जिदे बोल हौल के हौले है, मन मत हौली बोले बोल। जिदे बोल हल्के ने, कौड़े ने, फिके ने, झूठे ने, चोट पहुंचाने वाले ने, औला है मनुख हौला। बोल जो हल्के ने, बोलां च मिठास है, बोलां च दूर दृष्टि है, बोलां विच गहराई है, और जिस बोल च गहराई होवेगी उचताई भी उसे च होवेगी। जिस दरख्त ने अपनिया शाखा नूं आसमान तक लै जाए, आपकी गैतली अर्ज करा, फिर उस दरख्त नूं अपनिया जड़ां पाताल विच लै जाणी पैणी। जो दरख्त अपनिया जड़ां नूं गहरा नहीं लै जा सकिया, वो अपनिया शाखा नूं उपर भी नहीं खा सके। जितनिया जड़ां गहरिया जाणगियां उतने शाखा उपर उठणगियां। जो बोल गहरे नहीं होंदे वो बोल उच्चे भी नहीं होंदे। उच्चे बोल, गहरे बोल, मधुर बोल, ये महानता की निशानी है। मनमत हौली बोले बोल, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हल्के बोल, छोटे बोल, मनुख दे छोटे होने की पहचान। तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख की दुनिया की सारी हलचल, भाईचारा ते संबंध, मनुख की बहुत सारी दुनिया की

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है। So the Musia, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

शायद कंधे तलते भी नवा नरोवा हो गए। जिन्हों तुसी तन दे तलते तंदुरुस्त देखते हो नहीं ने, दिखाई दे रहे ने, रोग अजे जरा सीमा च है, ये भी महसूस कर दे, अजे जरा सीमा तो अगे नहीं गया। अनेक प्रकार के रोगों नाले देहुरी भरी हुई है, लेकिन इदियां जड़ां सूक्ष्म शरीर दे चने, मन दे चने। अस्थूल शरीर दे चों रोग निकलन आयुर्वेद आचारिया अगे आए, होम्योपैथी आई, यूनानी इलाज आया, एलोपैथी है, और बड़े यतन ने, लेकिन गुस्ताखी माफ, मनुख दा मन किवें स्वस्थ होवे, स्वय स्थित अपने विच टिके, इहदे कोई मनुख उद्यम भी नहीं करदा, यतन भी नहीं करदा, समा भी नहीं कढदा, इहदी लोड़ भी नहीं समझदा। तो हुंदा की पिया, रोज रोज मनुख दा मनमई कोश विज्ञानमई कोश रोगी हुंदा जा रहा है। इन्हों विज्ञानमई कोश क्यों कह, इहदे च शक्तियां बड़िया ने, इहदे च बड़ा कुछ है, बशर्ते इसनों सुचेत करिए। तन दी संगत करदिया करदिया, चूंकि तन जड़ है तो सूक्ष्म शरीर भी अचेत हो गया है, जैसी संगत वैसी रंगत, संगत दा असर है। ये पंजे दे पंजे तत् जड़ ने, जड़ दी संगत करदिया करदिया सूक्ष्म शरीर भी जड़ हो गया, भाव अचेत हो गया, सौ गया। तो मैं कई दफा अर्ज कीती है, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप, वाहेगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, इस सुत्ती हुई चेतना नूं जगाण वास्ते, इस सुते हुए मन नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुर सत गुर अपना, सोया मन जागाई। ये कितना जपिए, बारंग बार बार प्रभ जपिए, जपी जा जपी जा, उतने चिर तक जपी जा जितने चिर तक मन पूरा जागदा नहीं। पूर्ण तौर ते जागया होया मनुख सूक्ष्म तल ते, महाराज कहंदे ने, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लवे। साबत वस्तु की परमात्मा, परम रस परम आनंद, ये किसनों प्राप्त होंदा है, जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे, मन दे नौ भाग सुते थे ने, तो उस एक भाग नू थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसी गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है जागदा, सोया इति सूक्ष्म शरीर दे तल ते सोया होया है, सुता होया है। जागत सोया जन्म गवाया। वाहेगुरु वाहेगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नूं अद तो वद जगा लैंदा है, ऐसे मनुख नूं कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने, जिन्हों रिदियां सिदियां भी कह देंदे। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नो अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे ले जा भी सकदा है, फिर वापस ले आ सकदा है। तुसी आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे, हर दूजे तीजे महीने वो ऐसा कर लैंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नो कहा, मैं एक हफ्ता

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भो जोन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की हां मुक्तिया गै सुख पावे
1: धनवंता होए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में होए जाए पसमंत
1: न बदा आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: सिर भलाई निकट में आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब रह को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा ते बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लग को उठतावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना सुन भोग नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करना हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रम सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिन सह आवे न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किश होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नैवखयानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुनी सर उन बखयानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आरजा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक लीतरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान फरमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिललाए
0: जिउ जल बे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन ने दक्का तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजे न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करना हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्याहो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करना हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपद ਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਕੌਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖਾ ਪੁਰਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੁਤ ਕੀ ਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣੇ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ

निरंकार है नहीं लगे नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये को रहे।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवा।

0: पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाई है पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो रघुनगा साधन मारिए।

0: धुआ पूरा तपे का सतगिर धुआ हो कल जुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अशह सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया
1: चार वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए ये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण ता कसम कै मैल पाए सी कसम पावे सो कर।

जितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे बटियाया आपे ही कर्म कराएंदा वट हो वटा वट में इतनी सरे सर तंदे लाएंदा नजर उपठी जे करे सरता।

प्राणी सर मिले तन हो जन ज्योति जो समानी माधो साधु जन देव मिले दे इंद्र स्वभाव नासे पवित्र परम पर पाए रहा पांच और मिल लाडन मिले राम नाम तन हरे आर ब्रह्म खोज परे तब पकड़े तन सब तरह सुब्रया पखंड परम पाव हरता टेरे अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पुर पाया ज्ञान देह नया जगन्नाथ जगत जीव साई हर कृपा साधु नाशन हो तन हर दे हर गुण गावे संत महला चौथा डोल तुम बड़ पुरख बड़ गुण साई हम कीरे कर तुम नशे हर दीन दयाल करो ब्रह्म कृपा गुरु सर्व चरण हम वंशे गोविंद जियो सस मेल कर कृपे जन्म जन के कृपर भरिया मर संग कर प्रभ हंसे रहा तुम राजन जात जाता जप पत पविशे हर कियो सरल पंते ऊपर हर सोभा हर प्रभ दिन छे जात जर कुल प्रभ त्याय सब पूरे मान तिन छे से तन वड्डे बड़ पूरे हर जन जिन हर धार हर उर्षे हम ढींडे टीम बदर भारी हर धार हिरपा परमिल छे जन नारायण गुर पाया हर तुठे हम किए पत तप विशे संत हंडोल महला चौथा मेरा एक खिण मन मर सके नित हर हर नाम रसमिदे जो बार कृष्ट परे हो थन माता थन काढ़े बिल मृदे गोविंद जी मेरे मंत्र नाम हर विदे वटे भाग गुर सर्ब पाया वे काया नगर हसी दिर हो जन के साथ साथ संजेते हर बिरे प्रभु हर विदे जो जल कमल प्रीत आत भारी बिन जल देखे सुगली ते जन जप्यो नाम निरंजन नरभ देश गुरु हर प्रीत जन्म जन्म की हमे मल निरसी हर अमृत हर जल निते हमरे कर्म विच ठाकर तुम पैज रखो अपनी ते हर भावे सुन बेनती जन ना शर्म पवीते बसंत हंडोल महला चौथा मन किन किन भरम भरम भव तावे तिल कर नहीं वासा पाई हरंक शब्द आरुस तार कर मंदिर आन साई गोविंद जो सस मेल हर त्याई हमे रोग सह समाल लगाई रहा घर रतन लाल बमान कलांदे मन भ्रम्या लै सकाये जो ओडा कूम रोहिण खाडे तो सर्वस्त लहाये जन ऐसा सुरसान पै तिरगर तिर नर जवाय जन्म पदा पनहल पै कौडी बदले जाय मसूदन हर तार ब्रह्म कृपा हर कृपा गुरु मिलाये जन नानक निर्वाण पद पाया।

वाय सर्व सुखा सुखर किरणा तस्य प्राप्ति दान नानक गुरुच करे दान बसंत महला पंजवा तिस वसन जिस प्रभु कृपा तिवसन जिस गुरदयाल मंडल तिस्कृ सेठ नाम तिस्सन हृदय नाम गृहता कृष्ण गणी जाके कीर्तन हर तुनि पोहित प्रार ब्रह्म मौल मना प्रीत पार ब्रह्म पम मौल मना ज्ञान कमे पूजना सोतन जिस सासन सत्यन जिस गुरजंड से नृपा जन पो पाया सो सुखे जिस ब्रह्म ज्ञान सो क्रांति जि हृदय नाय सो नैन साय एक हुजे एक प्रीत दर्शन प्रसन्न ही चीत हरंग रंग सहज मान आनंदा ते जन कुर्बान

जाटो को जो सुनना दे मंजन सेहना पेवा जाके रात में कहीं जाए काटे काटे कटने समय जाके पर आनंद में जाके पर को नहीं कहे जाके पर को नहीं पाए जाके पर को सदन जाए कौन मंदिर कहीं जाए सुनदाता प्रभु रे समय नाम जाचे दान हर कृपा में देव नाम संत मल्ला परिवार

भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जपाया तृष्णा सर्वनाशी मंत्र ने सुख माय समाय जागरू हो दयाल हृपा ने सो गुण गावे कहो नानके बिरके संपे को गुरु पावे प्रसंत महला नौवा मन कह साराम नाम तन बिनसे जम सो परिप्राण रहो ए जग तू ही का उपहार ते साचा मन के विचार धन दार संपत ग्रह का संगण चाले समझ ले एक भगत नारायण हो संग कहो नान भज तह एक रंग संत महला नौवा कहा भूलो रे झूठे लोभ लाल कृष्ण बिगड़ो न अजो जा सम सुपने के जग जान बिन से साची मां संत रह मीत निवासर पर तार मीत बार अंत के हुए सहाय कहो नानक गुण ताके गाय संत महला पहला वस्तु अष्टपदियां हर पहला दो तुकियां एक ओंकार सरगुण प्रसाद

मेरे बिन हर भगती दुख कनेरा सुख दुख दाते ठाकुर मेरे रोग बड़ुख बंधु तीरा रोग बुझे सो काटे पीरा मैं अवगुण मन माए सिरिया ढूंढत खोज गुण मेले बीरा गुर का शब दारू हर नाव जो तू राख तिरहाओ जाग रोगी कह देख दिखाओ हर निर्माय निर्मल नाव कर में तर जो देह निकावे गुर महल सो महल बुलावे मन में मनवा चित में चीता है से हर के लोग चीता हर सोते रह नरासा अमृत चाख हर नाम वासा आवशा रह लागा जन्म जीत गुरम दुख भागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहज मरो जीवत ही जीवो अपनो प्रारा कुहर भावे तुमरो हित।

दुख नासा। कहो नानक भाई है बड़भागी, मंतन होए बेगासा। सारग महला पंजवा, दुपदे कर चौथा एको अंकार। सतगुर प्रसाद

0: तेजे सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ
1: ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ। ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਜੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਬ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਭੂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ਲ ਜੋ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਜੈਸੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਖਸਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਤੋਂ ਕੀਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਤੋਂ ਕੀਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਏ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਤੋਂ ਕੀਸ, ਕੰਧਾਰੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ। ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਰਾਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਤੋਂ ਕੀਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, गुरु खुदाए मन जैसे छोटे शब्दां च थोड़े बोलां च उस फकीर ने प्रश्न कीता है, थोड़े ही बोलां च सतगुरु जवाब पै देंदे ने। रहनुमाए तो कीस खुदाए मन, मेरा खुदाई मेरा रहबर और कोई रहबर नहीं। मैं सारा ज्ञान खुदा तो ले है। असी पैगंबर गुरु अवतार उनानों कहंदे आ जो परमात्मा दे ए बोल सीधे पकड़ लै, सीधे ही पकड़ लै, उन्हां दी पकड़ दे सीधे आ जांदे। ते जो अवतारां ते गुरुआं दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन असी उन्हां नूं भगत कहंदे आ। ए भगत ने इन्होंने अवतारां दी बाणी सुन के, अवतारां कोलो उपदेश लेके, पैगंबरां कोलो शिक्षा लेके, उन्हां दे बोलां नूं जीवन दा आधार बना के परमात्मा दी प्राप्ति की थी भगत। इस सिद्धे परमात्मा दे बोल नहीं पकड़ सके, जिन्हां ने पकड़े सन उन्हां नाल जुड़ के उन्हां नूं मन के ये पार उतरे। जो इस तरह सफलता नूं प्राप्त होया सी उन्हां नूं कहने हैं भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी, अवतार दे हर बोल दे ते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा दे ते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल दे ते भरोसा कीता। और उस भरोसे ने उना बोलां दे सदके पुचा दिता भगत। पर ए बोल सिद्धे जिन्हां दी पकड़ दे चा गए खला दे च, और ये बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सदबोलन था, हर वक्त परमात्मा तो ये बोल आ रहे हैं, हर वक्त गुरु नानक दी पकड़ दे चा गए, कृष्ण दी पकड़ दे चा गए, और महाभारत दे मैदान जंग दे जो गीता है ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे जंग दे निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलां नूं कहिंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल। ते परमात्मा अमिट है, इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है, शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने। वाकई गीता अमिट है क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, और वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन भुलेखा पै गया अगे चल के, ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप दे उन्होंने जगत दे सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जहा मुगलता पै गया। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े, ते कृष्ण दे इना बोलां नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास। तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए, कुदरती गल है अपनी रंगण चाड़ जाण गए। आप दी ग्यात लई अर्ज करा, एक कवि एक कविता बयान करे ते हुण कोई उस दे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नूं कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर दी। एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती। तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले, अर्जन नूं समझाया, हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है उथे उथे एकदम गल प्रगट हो जाती है, नहीं कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनों मैदान जंग देच भी कहण की जरूरत है, ए अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है, तू जो ये कहना है ये मेरा गुरु ये मेरे भरा इन्हां नूं मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता, तू स्वभाव दा क्षत्रिय है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा ता भी तेरे दिल दिमाग देते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, ये करना ही पड़ेगा। तू करता नहीं है, निमित्त है, पर अपना करता अपन एक पासे कर दे, इस जंग दे च भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेनु समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा करतापन तेरे नाल है तो तेरा त्याग भी तेनु परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनु ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा करतापन मौजूद होगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन दी पकड़ विच आ गई, उन्हें सुटे शस्त्र फिर चुक लए, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दिच आ गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां। जो परमात्मा दे बोलां नूं सिद्धा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारां दे राही पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत, अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहुंदे ने उंगलियां ते गिण सकदे आ, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे चोए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने, कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो ओ जैसे बहुती गर्मी बारिश नु जन्म दे देंदी है, इस तरह का घोर पाप किसे अवतार नु जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा है ते जगत नु सुनदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, कितने जगत अवतारा दे बोल नु पकड़दा है पूरा, थोड़े जिया फिर भी पकड़दे ने, उहदे नाल रोशनी हो जाती, उसने नाल काफी ठड़म्मा हो जाता है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई

और कोई गुरु नहीं है, ईश्वर ही गुरु है। वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नु जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने प्रसाद है, गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह दे ने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नु खोलना चाहना ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहदारी गुरु चाहिदा है कि नहीं, कौन दसे कदी देही भी गुरु आउंदी है, अज है ते कल नहीं। इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है, गुरु मर जांदा है, ते जो मर जांदा है वो गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है, उपदेश नू हिरदे च वसाओगे कि उस देही नू। जे आखो देही नू हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं, की लोड़ है। ते जे उपदेश नू हिरदे च वसाना है ते तां ही हिरदा बदलेगा, तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़ियां दी कदर, कपड़ियां दा सन्मान, बे फलाने दे कपड़े ने, फलाने दे वस्त्र ने। जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे हां, गुरु ग्रंथ साहिब दे रुमाले ने, पर हुण मैं अर्ज करां कि अखर ए वी रुमाले ने, कागज ए वी रुमाले ने, अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा। ओरे दे चों गुरु नूं कढ़ना पैंदा, मक्खण शाह लबाणा बनना पैंदा, गुरु ते हर वक्त बोले च, ए वी मैं अर्ज करदे। बाई देहदारी गुरु बार बैठे सन ते हजारां लोग भुल जांदे सन, उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जांदे सन, तसल्ली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लबाणा आया, इहदे कोल अख सी, कहिंदा रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दित्ते। तो चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे, गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन ओह किस तरह सच्चे हो सकदे। मक्खण शाह लबाणे दी सोचणी बकाले विच एक हलवाई तो पुछदा, इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारस होवे? उस हलवाई ने कहा सोडी बंस दा एक तेगा कमला है, गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है, एक तेगा कमला है, होरे च रहिंदा है, होरे विच है, बाहर नहीं आउंदा। वो जड़े बाई सन लिशके पुशके बार बैठे सन गदियां ला के, ये भौरे च गए, दर्शन कीते ने, बोल सुने, उपर चढ़ के कोठे ते कहिंदा है गुर ला धोरे, जो मैं बोल सुने ने ये परमात्मा ईश्वर ने। गुरु ते हर वक्त भौरे च है, ये भी मैं अर्ज करा। अखरां दे भौरे च कढ़ना पैगा, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिरसन जोग वखाण। इन्हां अखरां दे भौरे च कोई रब्बी जोत नूं कढे, कोई गुरु नूं प्रगट करे। जीवन दे च परमात्मा ते गुरु नूं प्रगट करना पैंदा है। इह वी अर्ज मैं करां, ना किधरे गुरु मिलदा है, ना किधरे इस तरीके नाल परमात्मा मिलदा है, प्रगट करना पैंदा है जीवन दे च। अपनी हालत इस ढंग दी बनानी पैंदी है कि गुरु प्रगट होवे, अपनी हालत ऐसी बनानी पैंदी है कि परमात्मा प्रगट होवे। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। इस बाणी नु सुनो, शब्द नु सुनो, ते जैसे सुन के शब्द अंदर वसेगा बार परमात्मा प्रगट हो जाए। सारा जगत परमात्मा दा रूप दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ए विश्व संसार

तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इधर शब्द ने अंदर प्रवेश किया, इधर सारा संसार निरंकार दिखाई देता। इधर गुरु नु सुनिया, इधर अखां ने परमात्मा वेखना आरंभ कर दिता। अखां नु अजे परमात्मा नहीं दिखाई देता, अखां ने अजे गुरु रूप परमात्मा नु सुनिया भी नहीं, क्योंकि गुरु वो जो बोल ने, वो जो शब्द ने परमात्मा दे ही ने। परमात्मा दे बोल ही अखां खोल सकते ने, जगत दे बोल, संसार दे बोल साडी अखां नहीं खोल सकते। ये भी मैं अर्ज करती, पर अखां खुल सकदियां ने अगर साडा मन पूरी एकाग्रता नाल सुने। और जिस दिन सुनेगा, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सुख सुने। एक भी सिखिया सुन ली, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया, तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा, आत्म दृष्टि प्रगट हो जाएगी, सारा संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पाएगा। इस तरीके नाल सतगुरु कहिंदे ने ओ गुरु है, अखीर विच कहिंदे ने ओ प्रसाद है। ए अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उसकी रहमत नाल बने, तेरे प्रयास नाल नहीं, उस दे प्रसाद नाल। अपने आप विच ए प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इस दा खुलासा कल दिन दे समय मैं थोड़े सामने करने की कोशिश करांगा। प्रसाद है साड़ी मेहनत नहीं, उदी रहमत है, साड़ा प्रयास नहीं, उदा प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनु मिलिया है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनु प्राप्त कीता है। कहिंदा नहीं, तू मिले है तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास कर देन, अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल, बड़ी गाल ना गाल देन, बड़ी मुशक्कत कर देने। पर मुशक्कत कर करके एक ही गल का पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा, बस इन्नी गल। मेहनत कर करके एक ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। प्रयास कर करके एक ही पता चलेगा एक गल का कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा, वो जद मिलता है उदा प्रसाद, वो जद मिलता है उदी रहमत, उदी किरपा। साडा कर्म नहीं उदी किरपा, साडा प्रयास नहीं उसका प्रसाद, साडी मेहनत नहीं उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है, इतनी मैं मेहनत करांगा मिल जाएगा, किसी नूं भी मिल जाएगा। फिर परमात्मा अमुल नहीं है, फिर ये शब्द कहने बनते नहीं। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समा। तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले का उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु का जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद। पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करने दी की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता। मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहते हैं, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया,
कोई दान करोड़ां दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता। ना कीते जप नाल मिलता, ना दिते दान नाल मिलता, ना कीती सेवा नाल मिलता। फिर किस तरह मिलता है? वो मिलता है अचनचेत। गाल ना मिले हो, सेव ना मिले हो, मिले हो आए अचिंता, अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद, उदी बख्शिश, उदी रहमत, मेहनत नहीं, उदी रहमत आया है। ये रहमत आखिर होंदी होवेगी, कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हां गुंजलां नूं गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी दे सामने रखण दी कोशिश करांगा। और समय नूं मुख रखदे होया इंज कह लो, कल समाप्ति कर देंगे। उंज ये मूल मंत्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सारी बाणी मूल मंत्र दी व्याख्या है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र का टीका ने, और कुछ नहीं। ईश्वर के सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे आ गए ने। वो एक है, वो ओंकार है, उस उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है, वो एक सत है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे दा ही नाम है, अमिट है, बाकी किसी का नाम नहीं। सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वो ही करता है, और जो एक है अपनी कृत दिच बैठा है, अपनी कृत तो वक नहीं है। वो जो एक है उसके स्वभाव दिच भय नहीं है, उसके स्वभाव दिच वैर नहीं है, उसकी होंद दिच काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, और वो जो एक है उसनु किसी ने बनाया नहीं, अजो नहीं है। वो जो एक है सैभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना बसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी, फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथ उस दी व्याख्या, जेडे मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे बयान कीते ने। गुर प्रसाद इसका थोड़ा जहा खुलासा कल आप जी दे सामने रख के, इस दौर दे जो आप जी नाल संजोग बनिया दो हफ्तिया का, कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटते रहे सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आन का ख्याल रोज आवे थोन। मैं इतना अर्ज करदे हाँ, जिमें आदमी पुत्रां कोल बैठता है, मित्रां कोल बैठता है, पत्नी कोल बैठता है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठता है, जैसे मित्रां कोल बैठते हैं, इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जहा मैं अपने अनुभव के आधार से कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा ता भी ना सी, बैठना भी लाभकारी। इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे, असी कलगीधर दे कोल बैठे, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह दे जो है बनन। खैर बाकी विचारां कल तुहानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उस दे च करोपी नहीं है, उस दे च सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसिया सजावां देंदा है, ऐसिया करणिया सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है, यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये भी मैं अर्ज कर देना, ना जगत किसी नो कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦ ਸਾ ਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਫਾਹਮ ਕਰਦ, ਐ ਖੁਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਸਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਦ ਸਾ ਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਫਾਹਮ ਕਰਦ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਸੀ, ਫਿਰਦੋਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਰਮਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਇਕ ਇਹ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਸਾ ਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਾਹਮ ਕਰਦ, ਐ ਖੁਦਾ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤਾ ਜੁਰਮ ਮਨ ਅਸਤ ਬੇਸ਼ ਯਾ ਰਹਿਮਤ ਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੋਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਬੋਝਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਰਹਿਮਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਾ ਜਬ ਦੇਖਾ ਹਸ਼ਰ ਨੇ, ਚੀਖ ਉਠਾ ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਨ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਲਟ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਸਾ ਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਾਹਮ ਕਰਦ, ਐ ਖੁਦਾ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਐ ਖੁਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ।
उसनों ही जपो। अगर कीतियां गलतियां दा अफसोस पैदा होया तो कई लोग तो इतने निराश होंदे ने लै अमृत साढ़े हिस्से च किथे च, असी किथे नाम जप सकते। ये पता है क्यों निराशा कीतियां हुई गलतियां सामने आंदियां? पर ना रख पुरखा कीतियां हुई गलतियां नू इतना बख्शिंद है, इतना दयालु है, उदी एक पल दी रहमत सब कुछ धो देंदी। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले भाए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक चिनगारी लखा मन लड़कियां जो है साड़ के स्वा कर देंदी है। उसकी पल भर दी रहमत एक निक्की जी चिनक तेरे करोड़ा पापा नु नाश कर देगी। तू एक चिनगारी ते पैदा कर अपने आप, तू इतना ते भरोसा कर उसते। वो रहीम है, वो रहमान है, वो प्रसाद है, वो करुणाकर है, वो दया दा सागर है। इस वास्ते प्रसाद ते गल गुरु नानक ने खत्म की, एक ते शुरू की थी, प्रसाद ते समाप्त की थी। तू प्रसाद है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू दयालु है, तू कृपालु है। इसकी जड़ी वजाहत जिस ढंग नाल गुरबाणी च है, कुछ बुद्धि अनुसार मैं कल आप जी दे सामने खोलण की कोशिश करांगा। अज इतने विचारां सारयां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। रोज आप समां कढ़दे रहे इत्थों दे सारे मुखी सज्जणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद, ते सेठी साहिबणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद। हर साल मैनूं याद करा देंदे ने इत्थे आवणा, और बणे होए प्रोग्राम नाल इत्थे दो हफ्ते हाजरी भरनी है। सतगुरु दी रहमत कीता होया वादा निभगे, सतगुरु की रहमत बख्शिश। कल फिर थोड़े चरण परसांगे, फिर मैं सारयां दा धन्यवाद करदे आया इत्थे समाप्ति करदा। दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: जगत दे सामने रख देना। तो सच रूपी पुत्र नू जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नू जन्म दिता है। कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील गुरु नानक का कहना है, जिथे सत्संग होवेगा उथे चंगी मत होवेगी, जिथे चंगी मत होवेगी उथे संतोख होवेगा, जिथे संतोख होवेगा उथे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा, जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा, प्रालभत ते भरोसा होवेगा उथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी, जिथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी उथे विकारां दा त्याग होवेगा, जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उथे भगती होवेगी, और जिथे भगती होवेगी उथे ज्ञान होवेगा, और जिथे ज्ञान होवेगा उथे परमात्मा आप होवेगा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM Gurbani segment tuhade tak. ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 AM ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack two ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com. An initiative of Pulse FM Cares.
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

0: एक अजिहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे जिससे तुसी भरोसा कर सको जो तजर्बेकार होवे। अजिहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
1: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
0: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
1: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगम अतोलय

सन्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने जो बयान किया, सत चित आनंद, वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है, तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया। गुरु नानक दे कंठ तो यह पहला उद्घोष है परमात्मा के संबंध में, एक। उस एक का स्वरूप की है, उस एक का स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नूं समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਹਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख, जो विचार नु मत्था टेक दी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुछ उदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं, ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुछ उदे जा। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख दी तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है, ये पूरने ने। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इस नू दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्वाणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नू भेट करना की है, अपने विचारां नू भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चली दी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारा का मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहते ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस उपरले रखियो गुमान है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नू नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्मे ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नू गोरा, किसे नू काला, किसे नू सांवरा, किसे नू लाल, किसे नू जर्दी मायल, किसे नू गेहुआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेका रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है।
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े आया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार सोचनी चितवनी ते आहंग, इसनु कहंदे ने मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित आहंग। इसनु शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहंदे ने, चतुष्टा अंतःकरण। चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नु मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नु तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया, बुद्ध। ते जद मनुख किसे नु याद करदा है या याद विच बैठा है, चिंतन विच बैठा है, ओही मन बन गया चित्त, मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आंदा है। पहले मनुख तन दा मान करदा है, धन दा मान करदा है, जोबन दा मान करदा है, प्रभुता दा मान करदा है, परिवार ते मान करदा है, जात ते मान करदा है, कुल ते मान करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते मान करदा है, बाकी किसे ते मान नहीं करदा, गुरु ते मान करदा है। तान मान दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते मान। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है। ये ते महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभता दा मान। भगत भी मैं करा निमान।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: जे किसे कर न्याणा होवे कदी किसे क्या भी बधाई होवे तुहाडे कर कल भाणा वापर गया तुहाडे कर न्याणा होया भाणा वापर गया क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया है। गुरु ने पहलियां पौड़ियां च क्या नहीं हो सिखा हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है ए सुख भी है ते इहदे विच दुख भी फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई करे सो चंगा मन में बेनती करे हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए। मेरी बेनती तुसी सारिया पौड़ी नाल पढ़ी पर ध्यान दे अज अर्था वाल हुक्म विच ही वडियाई है हुक्म विच ही अपमान है हुक्म विच ही मौत है हुक्म विच ही जन्म है हुक्म विच ही सुख है हुक्म विच ही दुख है पर इस हुक्म दी समझ तां पैंदी जद दिन बंदे दी ईगो मरेगी क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी ईगो कहिंदी मैं करन वाला फिर पौड़ी पढ़ लिये हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोई नानक हुक्म जे बुझे ता खौमे कहे ना कोई ओ खौमे च नहीं कहिंदा। मैं फिर बेनती करांगा जी इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इस ते देना है के करे चो सो चंगा मान दुई गणत लाखे जो कर रहा बस ऊ स्वीकार कर ले। अक्सर असी जदो ए मैं हुण भाणा शब्द वरते है ते ए आनंद साहिब च रोज पढ़ने जी जां तिस भाणा तां जम्मिया भाणा वापरिया ते बंदे दा जन्म होया परिवार भला पाया। एक असी घटना अक्सर सुनाने भाई भिखारी जी दी मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां उच्चो करनिया ने कि तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा है मेनू मना गा अगे असी बाणी चो देखांगे क्योंकि जो गुरु जी दी तां बाणी दे प्रमाण लई दे ने मता कोई सोचे शायद अपने कोलो। हुण असी जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने आ भाई भिखारी बारे ते जेड़ा सिख इनू मिलन गया ओदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख बच्चे दा विआह सी आप सब नू पता है भी जवान पुत्र दा विआह कर इन्ना खुशियां खेड़े पर भाई भिखारी जी जेड़े ने ओ तप्पड़ सींदे पए सन ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई ओही मर गया ते वापस आए ते भाई भिखारी जी अज कल जिस बच्चे दे व्याह विच इन्ने साजो समान घर कट्ठा करी बैठे सन ते अज तप्पड़ विछा के उस बच्चे दी मंजी दे कोल बैठ के ओ बंदगी कर लग पए। उत्थे उन्हां नूं पुछया गया भी जे तुहानूं पता सी संस्कार तो बाद ते तुसी ए गल कल क्यों ना कीती तुसी भेद क्यों ना खोलिया वो कहन लगे सिक्खी विच जिस बंदे ने मुक्त होना तीन गल्लां चेते रखे ये तीन लफज उत्थे भी ने ताते पो गुरमुख सुन लीजै ए भाई गुरमुख मेरी गल सुन भाणा मानन मन थिर कीजै भाणा मनन वास्ते मनू अडोल बना किवें जिवें उस्ताद अपने विद्यार्थी नूं साल दो साल पांच साल दस साल वी साल पढ़ांदा है ते वी पच्ची साल बाद फिर वह परचा पा के कहिंदा है वह सवाल पांदा है परचे पांदा है कहन लगे वी साल दी तैयारी एक दिन दे परचे पता लग जांदा है। कई बारी किन्ने किन्ने साल कीती हुई बंदगी इहो जी घटना वापरदी मौत ते दुख बन के उस बंदगी दा परचा पै जांदा है। कहने भाई याद रखी तैयारी हुण आप मेरे वर्गा ते कह देना कोई नहीं गुरु परचे पांदा पे प्यारे हो परचा भी तो ओहदा पैंदा जिहड़ा पढ़िया जिहड़ा पढ़ी कोई नहीं ओहदा परचा की। इत्थे भाई साहिब कहिंदे ताते पो गुरमुख सुन लीजै भाणा मानन मन थिर कीजै सत नाम को सिमरन करनो तन हंता को हृदय विसरनो एक शरीर दा मोह छड़ दे दूजा सिमरन कर तीसरा भाणा मनन वास्ते तैयार रहा कर मुक्ति के मार्ग तीन कह गुरु अर संत पर भी। मैं अर्ज करांगा जी करे सो चंगा मां।

हो सेवक करता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तो फिर गुस्ताखी माफ कहन देना, अगर अजे तक ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रगट होया तो फिर साडा भरोसा डोलदा है, विश्वास डोलदा है। अजे तक भगवान की झलक नहीं मिली तो भरोसा डोलदा है। बहुत छोटियां छोटियां गल्लां करके लोगों के भरोसे डोल जाते हैं, बहुत छोटियां छोटियां घटनावां नाल मनुख के निश्चय डोल जाते हैं, बहुत छोटिया छोटिया गल्लां मनुख के विश्वास के दराड़ा पा देंदियां। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। चलो उसते विश्वास करिए, इहदे वास्ते भी तो कोई प्रेरणा चाहिए है ना, कुछ ना कुछ तो प्रेरणा चाहिए। विश्वास करन वास्ते भी तो कोई प्रेरणा चाहिए है। वही सतगुरु कह रहे ना, अगांकु तरांग अगे वेख। मैं फिर अर्ज करा, बचपन जवानी बुढ़ेपे तो अगे की है काल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं काल दे अर्थ मौत ने, काल दे अर्थ समा, समा सब नु मिटा देंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं परमात्मा नु तू बाद दे च मन, बाद दे च कबूल कर, पहला मरण कबूल। रब दी गल छड बाद दे देख, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास, क्योंकि अकाल तो पहले काल है। अगां को उतरांग, दृष्टि अग्गे रख। काल तेनू रोज रोज घटा रहा है। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मनुख रोज रोज छोटा हो रहा है। अज का दिन लंघ गया, लोकी अपने नाल जोड़ देना सी, एक दिन वड्डे हो गए। बच्चे अपने नाल जोड़ देने, एक दिन वड्डे हो गए। मां बाप जोड़ देने, ये वड्डा हो गया एक दिन। अपने नाल भी जोड़ देना, अज का दिन सानू वड्डा कर गया, एक दिन वड्डे हो गए। गुरबाणी ऐसा नहीं मनती, हर दिन तेनू छोटा कर रहे। छिन छिन औद बेहत है, फूटे घट ज्यों पाने। एक टुटे घड़े दे एक एक बूंद पानी दी निकल रही है, पानी वध रहा है कि घट रहा है। जे 100 साल जीवना है, किसी ने अज का दिन लंघिया तो एक दिन ते घट गया। मनुख रोज रोज छोटा हो रहा है। किसी नु कहिए तो एक दिन अज छोटा हो गया, इनू अपशगन मन देन, अशुभ मन देन। पर इत सच्चाई है, एक दिन तू अज छोटा हो गया। गुरबाणी ये कह रही है, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतना कि ना जाने जे दिन दिन औद घटत है। तसली देंदा है अपने आप नू, बार दे सिलसिले नू देख के मैं वड्डा हो रहा, नहीं तू छोटा हो रहा है। हो सकता है तेरा परिवार वड्डा हो रहा है पर तू छोटा हो रहा है। हो सकता है तेरा कारोबार वड्डा हो रहा होवे पर तू छोटा हो रहा। हो सकता है तेरिया मैल माड़ियां वड्डियां हो रही वन पर तू छोटा हो रहा। वड्डा होंदा कारोबार, वड्डा होंदा अपना परिवार, वड्डे होंदे साजो समान नु वेख के मनुख भुलेखे च पै जांदा है, मैं भी वड्डा हो रहा तू छोटा हो रहा। परिवार वड्डा जरूर हो रहा है, तू छोटा हो रहा। कारोबार वड्डा जरूर हो रहा है, तू छोटा हो रहा। इस वड्डे होने नु देखेगा तेरी दृष्टि काल ते नहीं जाएगी। ते जेदी निगाह काल तक ही नहीं गई, अकाल तक किस तरह जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अगां कू तरांग, पिछा फेर ना मोड़ा। ठीक है, शताब्दियां चल रही ने, इस दास की भी काफी मसरूफियत है। दो दिन तीन तीन दिन वक् वक् शहर भज दौड़ जा रही है। गुरु ग्रंथ साहब की शताब्दी 400 साल,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musia, baby. Yeah.
3: Mercy.

जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: से भले खाना है,
1: रोटी कहना जाना है,
0: फ्रूटी कहना जाना है,
2: रोटी कहना ही जाना।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण @604581-1900।